0: आवाज़ी ताजिक आकाशवाणी आपका स्वागत है हमारे प्रसारण में। रेडियो आवाज़ी ताजिक 4 बजे दुशंबे नगर और साढ़े 4 बजे भारतीय समय के अनुसार एक घंटे के जारी प्रसारण हो जाता है। आप हमारे प्रसारण में ताजिकिस्तान के नैतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, इतिहास और जीवन के बारे में दिलचस्प टिप्पणियाँ आठ भाषाओं ताजिकी, दारी, फारसी, रूसी, उज़्बेकी, हिंदी, अरबी और अंग्रेजी में सुन सकते हैं।
1: से प्यारे सुनने वालों, रेडियो आवाज़ ताजी की हिंदी भाग की जारी है और आपका स्वागत है। हमारे प्रसारण में आप सुन सकते हैं स्थायी और विदेशी समाचार, ताजिकिस्तान के नीतिक, सांस्कृतिक

مانترہ راشترا ماندال کے سدسیہ دیشوں کے اودیوگک نیتی پریشد کی 12ویں بیٹھک آیوجت کی گئی۔ تاجکستان اور ایران کے بیچ ویاپار کاروبار میں لگ بھگ 9 ملین ڈالر کی وردھی ہوئی ہے۔ خوجند اور یورپین بینک فور ریکنسٹرکشن اینڈ ڈیولپمنٹ کے بیچ ایک سمجھوتا گیپ پر ہستاکشر کی گئی۔ یہ اور دوسری خبریں ہمارے اس گھنٹے میں۔ उनतीस मई को अस्ताना कजाकिस्तान की राजधानी में सीआईएस के सदस्य देशों के औद्योगिक नीति परिषद की 12वीं बैठक आयोजित की गई। ये जानकारी मिनिस्टर ऑफ इंडस्ट्री एंड न्यू टेक्नोलॉजीज ऑफ द रिपब्लिक ऑफ तजिकिस्तान ने दी है। बैठक में तजिकिस्तान के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व तजिकिस्तान के उद्योग एवं नई प्रौद्योगिकी मंत्रालय के प्रथम उप मंत्री इसोजो कुर्बानजोदा ने किया। बैठक में परिषद के सदस्य देशों के प्रतिनिधियों, सीआईएस के कार्यकारी समिति के प्रतिनिधियों तथा से भागी देशों के वैज्ञानिक और शैक्षणिक संस्थानों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। अपने संबोधन में तजिकिस्तान के प्रतिनिधिमंडल प्रमुख ने सीआईएस सदस्य देशों के औद्योगिक नीति परिषद में तजिकिस्तान की अध्यक्षता के दौरान प्राप्त परिणामों की जानकारी प्रस्तुत की। इसके बाद परिषद की अध्यक्षता कजाकिस्तान को सौंप दी गई। बैठक के एजेंडे में औद्योगिक क्षेत्र के विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग के विकास से संबंधित व्यापक विषयों पर चर्चा की गई। सीआईए सदस्य देशों के बीच भारी मशीन निर्माण उद्योग के विकास में सहयोग संबंधी समझौते के कार्यान्वयन के उद्देश्य से जिसे 5 जून 2025 को तजिकिस्तान द्वारा अपने अध्यक्षता अवधि के दौरान प्रस्तावित किया गया था, बैठक में इसके क्रियान्वयन हेतु तैयार कार्य योजना के मसौदा पर विचार किया गया और उसे स्वीकृति प्रदान की गई। इसके अतिरिक्त तजिकिस्तान की पहल पर बैठक के एजेंडे में सीआईए सदस्य देशों के बीच खाद्य उद्योग के क्षेत्र में सहयोग संबंधी समझौते का मसौदा भी प्रस्तुत किया गया। इस दस्तावेज के अंतर्गत खाद्य एवं प्रसंस्करण उद्योग के लिए उपकरणों के विकास और उपयोग, व्यावहारिक अनुसंधान तथा तकनीकी समाधानों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से वैज्ञानिक एवं शैक्षणिक केंद्रों का नेटवर्क स्थापित करने, खाद्य उद्योग के उत्पादन प्रक्रियाओं के डिजिटलीकरण और रोबोटीकरण के अनुभवों के आदान प्रदान तथा विशेष उत्पादों के उत्पादन में नवाचार को प्रोत्साहित करने जैसे क्षेत्रों में सहयोग का प्रावधान किया गया। तजिकिस्तान और ईरान के बीच मैत्रीपूर्ण आर्थिक और सामाजिक सहयोग हाल के वर्षों में लगातार विकास की ओर अग्रसर है। विशेष रूप से वर्ष 2026 के पहले 3 महीनों में दोनों देशों के बीच विदेशी व्यापार का कुल कारोबार 1019.6 मिलियन डॉलर तक पहुंच गया, जो वर्ष 2025 की इसी अवधि के तुलना में 8.9 मिलियन डॉलर या 8% अधिक है। ये जानकारी तजिकिस्तान और ईरान के बीच व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग पर आयोजित 18वीं संयुक्त आयोग की बैठक में दी गई, जो दो से अध्यक्षों तजिकिस्तान की ऊर्जा और जल संसाधन मंत्री दलेर जुमा तथा ईरान की ऊर्जा मंत्री अब्बास अलियाबादी की अध्यक्षता में दुशांबे में आयोजित हुई। बैठक में दोनों पक्षों ने अर्थव्यवस्था और व्यापार, ऊर्जा, जल संसाधन, उद्योग, परिवहन, निवेश, विज्ञान और प्रौद्योगिकी सहित अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग के विकास से संबंधित प्रमुख मुद्दों पर चर्चा की। तजिकिस्तान के ऊर्जा और जल संसाधन मंत्री ने कहा है कि दोनों देशों के उच्च नेतृत्व की मजबूत इच्छा शक्ति और प्रयासों के परिणाम स्वरूप तजिकिस्तान और ईरान के मैत्रीपूर्ण एवं भाईचारे वाले संबंध आज गुणात्मक रूप से नए स्तर पर पहुँच चुके हैं। उन्होंने ये भी जोर दिया कि इस बैठक के परिणाम दोनों देशों के बीच सहयोग को और मजबूत करने, नई संयुक्त परियोजनाओं के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनाने तथा भविष्य में नए सहयोग क्षेत्रों को निर्धारित करने में सहायक होंगे। बैठक के अंत में दोनों से अध्यक्षों ने तजिकिस्तान गणराज्य और ईरान इस्लामी गणराज्य के बीच आर्थिक, व्यापारिक और वैज्ञानिक तकनीकी सहयोग पर 18वीं संयुक्त आयोग के प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए। سعود اور یورپین بینک فور ریکنسٹرکشن اینڈ ڈیولپ

मेंस के बीच अगर इन सीटी कार्यक्रम के कार्यवाहियां के तहत एक समझ होता ज्ञापन पर हस्ताक्षर की गई। बैठक में दोनों पक्षों ने सहयोग के विस्तार सामाजिक आर्थिक क्षेत्र के महत्वपूर्ण परियोजनाओं के कार्यवाहियां में ABRG के योगदान तथा नई सहयोगी योजनाओं के कार्यवाहियां से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। वार्ता के दौरान बताया गया कि ABRD के साथ 20 वर्षों से अधिक समय के सहयोग ने कई महत्वपूर्ण अवसंरचनात्मक और सामाजिक परियोजनाओं के कार्यान्वयन में उल्लेखनीय परिणाम दिए हैं। ये भी कहा गया कि ताजिकिस्तान सरकार और रश के नेता मामोहिम इमोमाली रामों के रचनात्मक नीति के तहत सुख क्षेत्र में निवासियों के जीवन स्तर पर सुधार, आर्थिक और सामाजिक क्षेत्रों के विकास तथा महत्वपूर्ण कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं। इस प्रक्रिया में घरेलू और विदेशी निवेश तथा अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों विशेषकर ABRD के भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। बताया गया कि ABRD के वित्त पोषण से जल एवं ऊर्जा, कृषि तथा अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों में कई प्राथमिकता वाली परियोजनाएं लागू की गई है और पारस्परिक रूप से लाभकारी सहयोग जारी है। क्षेत्रीय प्रशासन प्रमुख ने कहा है कि सरकार के समर्थन से हुजान, बोस्तान, गुलिस्तान और बबाजू गफूर जिले में स्वच्छ पेयजल आपूर्ति में सुधार तथा सीवरेज लाइनों में पुनर्निर्माण जैसी महत्वपूर्ण परियोजनाएं लागू की जा रही है। इन परियोजनाओं के लिए ABRD का निवेश अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। इसके अलावा पिंपिन स्टेशनों के निर्माण, सामाजिक संस्थानों और उद्यमों में सौर पैनलों के उपयोग तथा विभिन्न क्षेत्रों में नई परियोजनाओं के कार्यान्वयन को क्षेत्रीय विकास के लिए महत्वपूर्ण बताया गया। समझ होता ज्ञापन पर सुख क्षेत्र के अध्यक्ष और ABRD के अध्यक्ष ने हस्ताक्षर किए। अंत में क्षेत्रीय प्रमुख ने ABRD के प्रतिनिधि मार्क बोमन को जून में आयोजित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले सुख 2026 में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया। संयुक्त राज्य अमेरिका में ताजिकिस्तान के राजदूत जौकी जोदा ने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर यूटाथ प्रदेश के अध्यक्ष जोनाथन फ्राइडमैन के साथ मुलाकात की। ये जानकारी संयुक्त राज्य अमेरिका में ताजिकिस्तान के दूतावास ने दी है। मुलाकात में यूटा राज्य के व्यापार प्रतिमंडल और उद्यमों के अप्रैल 19-30, 2026 को ताजिकिस्तान की यात्रा के परिणामों पर चर्चा की गई। दोनों पक्षों ने ताजिकिस्तान में आर्थिक निवेश, सामाजिक और क्षेत्रों में तो संयुक्त परियोजनाओं के कार्यान्वयन पर विचार विमर्श किया। ताजिकिस्तान सरकार देश के अर्थव्यवस्था में निवेश आकर्षित करने के उद्देश्य से अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संगठनों के साथ सहयोग को और मजबूत कर रही है। ये जानकारी नेशनल बैंक ऑफ ताजिकिस्तान ने दी है। इस संदर्भ में फिरदौस तोलिबजोदा, नेशनल बैंक ऑफ ताजिकिस्तान के अध्यक्ष ने अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय कंपनियों JP Morgan, लुमी स्टाइल्स एंड कंपनी, मोर्गन स्टैनले इन्वेस्टमेंट्स मैनेजमेंट्स और ग्लोबल एवोल्यूशन के प्रतिनिधिमंडल के साथ मुलाकात की। मुलाकात में वैश्विक और क्षेत्रीय आर्थिक स्थिति, ताजिकिस्तान के अर्थव्यवस्था के विकास की संभावनाएं, वित्तीय और बैंकिंग क्षेत्र में सुधार तथा निवेश आकर्षित करने की संभावनाओं पर चर्चा की गई। दोनों पक्षों ने बैंकिंग क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय मानकों के कार्यान्वयन और डिजिटल वित्तीय सेवाओं के विकास पर भी विशेष ध्यान दिया। फिरदौस तोलिबजोदा ने बताया कि हाल के वर्षों में देश में भुगतान कार्डों, इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट्स और गैर नकद लेन देन की मात्रा में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जिससे अर्थव्यवस्था के डिजिटलीकरण की प्रक्रिया तेज हुई है। ये भी कहा गया कि विदेशी निवेशकों के लिए वित्तीय और बैंकिंग क्षेत्र में अनुकूल परियोजनाएं परिस्थितियां बनाई गई है और इस दिशा में हरित वित्त पोषण, डिजिटल अवसंरचना का विकास तथा छोटे और मध्यम उद्यमों का समर्थन प्राथमिक दिशाएं हैं। बैठक के अंत
अंत में दोनों पक्षों ने वित्त, निवेश और बैंकिंग प्रणाली में सहयोग के नए अवसरों की खोज तथा संवाद जारी रखने में रुचि व्यक्त की। ये बैठक तजिकिस्तान गणराज्य के राष्ट्रपति मामाखीम उमालीरामोव के निर्देशों के कार्यान्वयन के तहत नेशनल बैंक ऑफ तजिकिस्तान और अंतर्राष्ट्रीय वित्त संस्थानों विश्लेषकर जीपी मोर्गन के साथ सहयोग के माध्यम से देश की अर्थव्यवस्था में निवेश आकर्षित करने के उद्देश्य से आयोजित की गई। तजिकिस्तान के राज्य स्वतंत्रता के 35वीं वर्षगांठ और अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस के उपलक्ष्य में बच्चों में निवेश, राज्य के सतत विकास और बाल अधिकारों की सुरक्षा की आधारशिला शीर्षक से एक सम्मेलन आयोजित किया गया। इस बारे में जानकारी मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन एंड साइंस ऑफ रिपब्लिक ऑफ तजिकिस्तान के प्रेस केंद्र ने दी है। सम्मेलन के दौरान दिलराबो मंसूरी उप प्रधानमंत्री ने कहा कि बच्चों पर ध्यान देना, उनकी सुरक्षा और उन पर निवेश करना राज्य और सरकार की सामाजिक नीति के प्रमुख दिशाओं में से एक है, जो समाज के सतत विकास और मानव पूंजी के सुदृढ़ीकरण की मूल बहुल आधारशिला है। उन्होंने कहा है कि वैश्वीकरण और डिजिटल तकनीकों के तीव्र विकास के दौर में वही देश सफल होते हैं जो मानव विकास, विशेषकर बच्चों के विकास को प्राथमिकता देते है। इस संदर्भ में तजिकिस्तान की सामाजिक नीति राष्ट्र के नेता मामाखीम उमालीरामोव के में बच्चों के विकास और उनके लिए अनुकूल वातावरण बनाने पर केंद्रित है। रहीम सईद जोदा शिक्षा और विज्ञान मंत्री ने कहा कि बच्चों पर निवेश वास्तव में उनके ज्ञान, शिक्षा, स्वास्थ्य, संस्कृति और सुरक्षा में निवेश है। प्यारे सुनने वालों, ये थी समय के ताज़ा खबरें जो हमने आपको प्रस्तुत किया। हमारे दूसरे प्रसारण जारी रहा है, हमारे रेडियो के साथ रहे।

आप हमारे वार्ता कार्यक्रम से जुड़े हैं। इस कार्यक्रम में हम दीन के महत्वपूर्ण मुद्दों, संस्कृति, समाज और रोजमर्रा की जिंदगी पर रोचक विश्लेषण और चर्चा प्रस्तुत करते हैं। हमारे साथ बने रहें। उपयोगी वार्ताएं और ताज़ा खबरें हमेशा हमारे प्रसारण में उपलब्ध है।

0: से विराज ताजिकिस्तान की मेडिकल यूनिवर्सिटी की पांचवी कोर्स की विद्यार्थिनी है। पांच साल पहले वो ताजिकिस्तान आई और यूनिवर्सिटी में ताजिक भाषा सीखने लगी। भाषा के अलावा ताजिक गाने भी उसको अच्छी लगी। इससे पहले हिंदुस्तान में गिफ्टी हिंदी और मलयालम में गाने गाती थी। उसकी अच्छी आवाज़ देख के उसके शिक्षिका ने गिफ्टी को ताजिक गाने पेश किया। ताजिक गाने गाना गिफ्टी को अच्छा लगा। वो कहती हर कार्यक्रमों में जो यूनिवर्सिटी और उसके बाहर आयोजित होता है वो भाग लेती है। गिफ्टी ने इस गाने के बारे में ये बात कही।
1: नमस्कार दोस्तों, मैं गिफ्टी सिवराज एहान ताजिकिस्तान में अविसिना मेडिकल इंस्टीट्यूट में पांच कोर्स में पढ़ती हूँ। यहाँ इन पाँच सालों में मुझे हर साल ताजिक गाना का मौका मिला है और इसके लिए मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत महसूस करती हूँ। और इन सबका श्रेय जाता मेरी आवाज़ क्लास में सुनकर मुझे गाना का अवसर देने वाली मेरी ताजिक मैम श्रीमती सुहरा मैम। उन्होंने मुझे यूनिवर्सिटी से परिचय करवाया और यूनिवर्सिटी से मैं यहाँ के भिन्न भिन्न गवर्नमेंट प्रोग्राम्स में भी भाग लेने का अवसर मिला। इनमें कुछ प्रोग्राम्स थे, नवरोज़ प्रोग्राम, यूथ डे, वुमेंस डे प्रोग्राम। इन प्रोग्राम्स में मैंने कई गाने गाए। उस मेन एक है गाना आला। यह एक प्रागा ललबी है जो एक माँ की ममता को दर्शाता। माँ ये अपने बच्चे को सुनाने से पहले अपनी मधुर आवाज़ में अपने बच्चे के कानों में गूंजती है। ये गाना एक माँ का उसके बच्चे की तरफ स्नेह को प्रकट करता। इस दुनिया में माँ के ज़्यादा उसके बच्चे को कोई और प्यार नहीं कर सकता। उसका स्नेह अमूल्य है। ये गाना दर्शा को भी बहुत पसंद आया। ये गाना मुझे यूनिवर्सिटी ने सुझाव दिया। शुरू में कुछ वाक्य पढ़ने और जाने में मुश्किल थे, लेकिन प्रैक्टिस के बाद गाना आसान निकला। जो ताजिक गाने में गए वे ज़ारे अर्थपूर्व है और यह गाने भी मज़ेदार है। नए एक राज्य में मेरे को अपनी कला को दर्शने मौका मिला, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ और यह उम्मीद करती हूँ कि आगे भी मुझे अवसर मिलते हैं।
0: आपको याद दिलाया कि कई साल पहले हमने अपने प्रोग्राम में गिफ्टी को आमंत्रित की थी और उन्होंने ताजिकिस्तान पर अपने नए गाने को पेश किया था। आप उस इंटरव्यू का एक पार्ट आपके लिए पेश करते हैं।

जैसा कि गिफ्टी ने बातचीत में हमारे साथ कहा, विभिन्न सरकारी प्रोग्राम्स में उसको ताजिक गानों को गाने की मौका मिलती है। इससे पहले गिफ्टी कई गाने पेश की थी, पर अलग गाना विशेष रूप से ताजिक लोगों के बीच बहुत प्रसिद्ध हो गया, क्योंकि ये लोक गाना है, लोरी है, जिसको गाना आसान नहीं होता। और इसमें एक वीडियो भी बनाया गया था जिसमें गिफ्टी ताजिक पोशाक में ताजिक माँ की तरह लोरी गा के बच्चे को सुलाती है। ये बहुत दिलचस्प था और ताजिक लोगों के लिए बहुत अच्छा लगा कि एक विदेशी लड़की को उनके परंपराओं और रीति रिवाजों, संस्कृति और भाषा में दिलचस्पी है।

श्रोताओ, आप हिंदुस्तानी लड़की गिफ्टी सेवरेज की ताजिक गानों के बारे में हमारे प्रोग्राम को आपने सुना। इस समय आला गाने को पूरा सुन के गुजर जाते हैं दूसरे प्रोग्राम में।

0: आवाज़ी ताजिक आकाशवाणी आपका स्वागत है हमारे प्रसारण में। रेडियो आवाज़ी ताजिक 4 बजे दुशम्बे नगर और 4:30 बजे भारतीय समय के अनुसार 1 घंटे के जारी प्रसारण हो जाता है। आप हमारे प्रसारण में ताजिकिस्तान के नैतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, इतिहास और जीवन के बारे में दिलचस्प टिप्पणियाँ आठ भाषाओं ताजिकी, दारी, फारसी, रूसी, उज़्बेकी, हिंदी, अरबी और अंग्रेजी में सुन सकते हैं।
1: से प्यारे सुनने वालों, रेडियो आवाज़ ताजिक हिंदी भाषा की जारी है और आपका स्वागत है। हमारे प्रसारण में आप सुन सकते हैं स्थायी और विदेशी समाचार, ताजिकिस्तान के नैतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक जीवन के बारे में दिलचस्प बयान, विश्लेषण, विशेषज्ञों से बातचीत। आज की जिम्मेदारियां में इस प्रोग्राम के दीते रामजोर प्रोड्यूसर शेर अली वाली शेर आपका समाचार भाग में स्वागत करते हैं और अब मुख्य खबरों से शुरू करें।

पारस्परिक रूप से लाभकारी सहयोग जारी है। क्षेत्रीय प्रशासन प्रमुख ने कहा है कि सरकार के समर्थन से खुजान, बोस्तान, गुलिस्तान और बबाजों गफूरव जिले में स्वच्छ पेयजल आपूर्ति में सुधार तथा सीवरेज लाइनों में पुनर्निर्माण जैसी महत्वपूर्ण परियोजनाएं लागू की जा रही है। इन परियोजनाओं के लिए ABRD का निवेश अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। इसके अलावा पिंपिन स्टेशनों के निर्माण, सामाजिक संस्थानों और उद्यमों में सौर पैनलों के उपयोग तथा विभिन्न क्षेत्रों में नई परियोजनाओं के कार्यान्वयन को क्षेत्रीय विकास के लिए महत्वपूर्ण बताया गया। समझ होता ज्ञापन पर सुख क्षेत्र के अध्यक्ष और ABRD के अध्यक्ष ने हस्ताक्षर किए। अंत में क्षेत्रीय प्रमुख ने ABRD के प्रतिनिधि मार्क बोमन को जून में आयोजित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले सुख 2026 में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया। संयुक्त राज्य अमेरिका में तजिकिस्तान के राजदूत जौकीजोदा ने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर यूताह प्रदेश के अध्यक्ष जोनाथन फ्राइडमैन के साथ मुलाकात की। ये जानकारी संयुक्त राज्य अमेरिका में तजिकिस्तान के दूतावास ने दी है। मुलाकात में यूताह राज्य के व्यापार प्रतिमंडल और उद्यमों के April 19-30, 2026 को तजिकिस्तान की यात्रा के परिणामों पर चर्चा की गई। दोनों पक्षों ने तजिकिस्तान में आर्थिक निवेश, सामाजिक और क्षेत्रों में तो संयुक्त परियोजनाओं के कार्यान्वयन पर विचार विमर्श किया। तजिकिस्तान सरकार देश के अर्थव्यवस्था में निवेश आकर्षित करने के उद्देश्य से अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संगठनों के साथ सहयोग को और मजबूत कर रही है। ये जानकारी नेशनल बैंक ऑफ तजिकिस्तान ने दी है। इस संदर्भ में फिरदौस तोलिबजोदा, नेशनल बैंक ऑफ तजिकिस्तान के अध्यक्ष ने अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय कंपनियों JP Morgan, लुमिस टाइल्स एंड कंपनी, मॉर्गन स्टैनली इन्वेस्टमेंट्स मैनेजमेंट और ग्लोबल एवोल्यूशन के प्रतिनिधिमंडल के साथ मुलाकात की। मुलाकात में वैश्विक और क्षेत्रीय आर्थिक स्थिति, तजिकिस्तान के अर्थव्यवस्था के विकास की संभावनाएं, वित्तीय और बैंकिंग क्षेत्र में सुधार तथा निवेश आकर्षित करने की संभावनाओं पर चर्चा की गई। दोनों पक्षों ने बैंकिंग क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय मानकों के कार्यान्वयन और डिजिटल वित्तीय सेवाओं के विकास पर भी विशेष ध्यान दिया। फिरदौस तोलिबजोदा ने बताया कि हाल के वर्षों में देश में भुगतान कार्डों, इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट्स और गैर नकद लेन देन की मात्रा में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जिससे अर्थव्यवस्था के डिजिटलीकरण की प्रक्रिया तेज हुई है। ये भी कहा गया कि विदेशी निवेशकों के लिए वित्तीय और बैंकिंग क्षेत्र में अनुकूल परियोजनाएं परिस्थितियां बनाई गई है और इस दिशा में हरित वित्त पोषण, डिजिटल अवसंरचना का विकास तथा छोटे और मध्यम उद्यमों का समर्थन प्राथमिक दिशाएं है। बैठक के अंत में दोनों पक्षों ने वित्त, निवेश और बैंकिंग प्रणाली में सहयोग के नए अवसरों की खोज तथा संवाद जारी रखने में रुचि व्यक्त की। ये बैठक तजिकिस्तान गणराज्य के राष्ट्रपति मामाखीम मलिरामों के निर्देशों के कार्यान्वयन के तहत नेशनल बैंक ऑफ तजिकिस्तान और अंतर्राष्ट्रीय वित्त संस्थानों विश्लेषकर JP Morgan के साथ सहयोग के माध्यम से देश की अर्थव्यवस्था में निवेश आकर्षित करने के उद्देश्य से आयोजित की गई। तजिकिस्तान के राज्य स्वतंत्रता के 35वीं वर्षगांठ और अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस के उपलक्ष्य में बच्चों में निवेश, राज्य के सतत विकास और बाल अधिकारों की सुरक्षा की आधारशिला शीर्षक से एक सम्मेलन आयोजित किया गया। इस बारे में जानकारी मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन एंड साइंस ऑफ रिपब्लिक ऑफ तजिकिस्तान के प्रेस केंद्र ने दी है। सम्मेलन के दौरान दिलराबो मंसूरी, उप प्रधानमंत्री ने कहा है कि बच्चों पर ध्यान देना, उनकी सुरक्षा और उन पर निवेश करना राज्य और सरकार की सामाजिक नीति के प्रमुख दिशाओं में से एक है, जो समाज के सतत विकास और मानव पूंजी के सुदृढ़ीकरण की मूल बहुल आधारशिला है। उन्होंने कहा है कि वैश्वीकरण और डिजिटल तकनीकों के तीव्र विकास के दौर में वही देश सफल होते हैं जो मानव विकास, विशेषकर बच्चों के विकास को प्राथमिकता देते है। इस संदर्भ में तजिकिस्तान की सामाजिक नीति राष्ट्रीय नेता मामाखीम मलिरामों के नेतृत्व में
बच्चों के विकास और उनके लिए अनुकूल वातावरण बनाने पर केंद्रित है। रहीम सईद जोदा।

शिक्षा और विज्ञान मंत्री ने कहा कि बच्चों पर निवेश वास्तव में उनके ज्ञान शिक्षा स्वास्थ्य संस्कृति और सुरक्षा में निवेश है। प्यारे सुनने वालों, ये थी समय के ताज़ा खबरें जो हमने आपको प्रस्ताव किया। हमारे दूसरे प्रसारण जारी रहा है, हमारे रेडियो के साथ रहे।

आप हमारे वार्ता कार्यक्रम से जुड़े हैं। इस कार्यक्रम में हम दीन के महत्वपूर्ण मुद्दों, संस्कृति, समाज और रोजमर्रा की जिंदगी पर रोचक विश्लेषण और चर्चा प्रस्तुत करते हैं। हमारे साथ बने रहें। उपयोगी वार्ताएं और ताज़ा खबरें हमेशा हमारे प्रसारण में उपलब्ध है।

जैसे कि गिफ्टी ने बातचीत में हमारे साथ कहा, विभिन्न सरकारी प्रोग्राम्स में उसको ताजिक गानों को गाने की मौका मिलती है। इससे पहले गिफ्टी कई गाने पेश की थी, पर अला गाना विशेष रूप से ताजिक लोगों के बीच बहुत प्रसिद्ध हो गया, क्योंकि ये लोक गाना है, लोरी है, जिसको गाना आसान नहीं होता। और इसमें एक वीडियो भी बनाया गया था जिसमें गिफ्टी ताजिक पोशाक में ताजिक माँ की तरह लोरी गा के बच्चे को सुलाती है। ये बहुत दिलचस्प था और ताजिक लोगों के लिए बहुत अच्छा लगा कि एक विदेशी लड़की को उनके परंपराओं और रीति रिवाजों, संस्कृति और भाषा में दिलचस्पी है।

हिंदुस्तानी लड़की गिफ्टी सेवरेज की ताजिक गानों के बारे में हमारे प्रोग्राम को आपने सुना। इस समय आला गाने को पूरा सुन के गुजर जाते हैं दूसरे प्रोग्राम में।